तू समझ जाना यार, मत पूछ भाई ज्यादा, इमोशनल हो जाऊंगा भाई, पिल्लो ला दे एक, मैं तो यहीं पे सो जाऊंगा। तू मत सो भाई, तू गाना गाता रह।

0: 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: Hello, namaste, sasriya kaal. Kya haal chaal hai, dosto? डोगरी रेडियो सुनदा मता मता स्वागत है. मैं हाँ डोगरी दी थी नेहा शर्मा. मैं आज तुझे सुनानी है एक डोगरी कविता. बड़ी की अच्छी बड़ी की मीनिंगफुल कविता है. तुम ध्यान लाइए सुनियो. धियां ते होंदियां ने पुत्तरे शा प्यारियां. कुख बिच मारने दी करो नी तैयारियां. इंदे जंदे गे होई जान घरे बिच बरानियां. धियां ते होंदियां ने मन्नता बगानियां. हसदियां ने जियां फुल्ले दियां क्यारियां. धियां ते होंदियां ने मन्नता बगानियां. पर ये डुआरियां होई जान बगानियां. गुटियां पटोले छोड़ी जान निशानियां. घर घर खेडा इंदा लगन नियारियां. दुख जरिए भी मुआ नहीं बोल दियां. भेद दिले दे कदे नहीं खोल दियां. दाऊ दिने दियां परौनियां बेचारियां. तियां ते होंदियां ने पुत्तरे शा प्यारियां.

वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं पता तुसी सारे की ये कविता बहुत अच्छी लगी है क्योंकि है बड़ी अच्छी बड़ी मीनिंगफुल है। पर इस कविता के माध्यम कला मैं स्नेहा देना चाहनी हाँ साढ़े पढ़े लिखे समाज जो अज भी कुड़िए ते मुड़े च भेद करते हैं। अज भी अगर उन्हें पता लगी आ कि ये कुड़ी होने वाली है तो मिनट नहीं लाते उसी खत्म करने च। अज भी कोई ना कोई टब्बर ऐसा है जिथे अज भी मत्थे टेके जाते हैं कि कुड़ी नहीं हो तो मुड़ा हो। अज बड़ी तरक्की भी हो गई है तो बड़े सारे परिवार एक एग्जाम्पल भी सैट करते हैं उन्हें कुड़ियों के जमने पर बड़ी खुशी मनाई जाती है बड़े अच्छे तरीके सैलीब्रेट करिए समाज ही स्नेहा भी देंगे दें। पर फिर भी बिलीव मी अजे भी उए ने लोग हैं जो पढ़े लिखे दिन पर फिर भी कुड़ियों तो मुड़ियों से भेद करते हैं तो हमेशा उम्मीद करते हैं कि उनके घर मुड़ा के जम्मे कुड़ी नहीं हो।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, अस गल करा दे हे दुग्गा प्रदेश दी तीएं दी, तीएं ते मुड़े झोने आले भेद पाओ दी। मैं आ तुंदी आरजे डोगरें दी धी नी। हाँ, मेरा ट्विटर अकाउंट है डोगरन सोल, करने तुस उत्थे मैं फॉलो करी सकते हो। ते अगर अज दी धीआं अगर झांसी दी रानियां ते ओह सती ते सवित्री दा भी किरदार हन, हर तरह दा एक मल्टी रोल प्ले कर दियां अज दियां धीआं। ते मैं तां गई इस रेडियो दे माध्यम तुंदे सारे कोला फिर रिक्वेस्ट करना चाहनी हां कि कुड़े ते मुड़े च बिल्कुल भेदभाव बंद करिए, उन्हें बराबर दा दर्जा देइए। ते उन्हें तुस ये मेरा स्नेहा अगे भी शेयर सारे जरूर करियो। ते हुण मैं इजाजत दियो, मेरे जाने दा टाइम होई है, फिर मैं परतिए मिलगी तुंदे कन्ने एक नवी और कोई पेशकश दे कन्ने। बाय बाय।

0: नमस्कार आदाब सोन यह प्रोग्राम बोजन वाले टाटन सामिन खर मकदम करा
1: दपान जबान च आसान कौमच पहचान तो यह पहचान कायम दायम थावन खतर च जरूरी इस सारी मिलित करो पन जबान रचरावट यम कौमन पन जबान जिंद थव सु कौम च सास बदन वरियन पनी मूल पहचान जिंद थवान ये च पुज हर का जबान च पन्ने पन्ने कौम खतर सठा अहम तो जरूरी यत पट सई माज जव छ कशर असि कशरन ति छ दुनियास मज यही अख पहचान जे अस छ कशर बोलान वलियो रचून पने जबान तेले हकव इस फखर सान वनित अस छ कशर वंच पेश अख खूबसूरत बात

0: 1530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब दे अमीर विरसे दी पुक्कल चो यादां दे संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
0: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
3: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू

0: 8056।
1: कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी यानी कि CRA बिना किसी कोर्ट जजमेंट तो तुम्हारे यानी कि CRA बिना किसी कोर्ट जजमेंट तो तुम्हारे बैंक अकाउंट को सीज या फ्रीज कर सकते हैं। तुसी CRA दे कर्जे नो लीगली माफ करवा सकते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल DCAF
2: 905-908-2499 905-908-2499 और विजिट 411debt.ca। सम कंडीशंस अप्लाई।
3: ऑटो ओनर्स, क्या आप ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं या फिर नया ड्राइवर ऐड करने के बाद आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बढ़ गया है? अगर आपके पास जी या G2 लाइसेंस है और कनाडा में 3 सालों का इंश्योरेंस एक्सपीरियंस है तो टेंशन मत लीजिए।
4: ऑल स्टेट इंश्योरेंस के दीक्षा गुलेरिया को आज ही कॉल करें, जो आपको अच्छा प्रीमियम, ऑनेस्ट एडवाइस और ग्रेट सर्विस भी देंगे। अपनी होम और ऑटो इंश्योरेंस का पैकेज बनवाएं और अप टू 30% तक बचाएं। ऑल स्टेट इंश्योरेंस के दीक्षा गुलेरिया 6476562810 6476562810।
5: ड्राइव कर रहे हो? शोनो एंजॉय कर रहे हो? कुछ बोल रहे हो?
6: ड्राइविंग लाइसेंस?
5: नो।
6: पुलिस ऑफिसर?
5: नो नो।
6: ट्रैफिक लाइट्स?
5: नो।
6: देन
7: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज। मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले। आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज ना काम कर रहे पवन कौर गिल। 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकती है ऑटो, होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी। 647-325-9100 647-325-9100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस।
8: जिंदगी एक सफर है सुहाना।
7: की तुसी कनाडा विच स्टूडेंट वीजा दे उत्ते वर्क परमिट ते आए होए हो या तुसी कैनेडियन सिटीजन या PR होल्डर हो, अपने दोस्त रिश्तेदार ते मित्रां नूं अगर विजिटर या टूरिस्ट वीजा ते कनाडा बुलाउणा चाहुंदे हो तां परखिया ते भरोसे वाला नाम पंजाब विच सब तों वध सक्सेस रेट दे नाल ईजी वीजा विजिटर वीजा कनाडा दा लगवा के दे रहे हन। वधेरे जानकारी लई ईजी वीजा 9592200200 9992200200 ते अज ही कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बनाओ।
9: सुनो जी, किथे हो? 11:30 हो गया रात दे, घरे नहीं आना अज?
10: मैं सेविंग कर रहा, नाले ग्रोसरी खरीद रहा, नजारा आ रहा हैगा।
9: झूठ बोलन दी आदत नहीं की तुहाडी? रात नु 11:30 केड़ा ग्रोसरी स्टोर खुला होया?
10: फ्रेश ग्रोसरी डिपो रात दे 12 बजे तक खुलदे ने, जिन्ना दा कहंदे एक डोर तो बढ़ो दूजे तो निकलो। सेविंग 100 डॉलर दी 905-458-1331 स्टेपल बुश स्टॉर रूम ते स्टेपल बुश दा इंटरसेक्शन फ्रेश ग्रोसरी डिपो 9054581300।
11: छोटा मोटा कर्जा या करवानी है कोई भी घर विच रेनोवेशन, होम एक्विटी वीजा ले सकते हो। साधारण क्रेडिट कार्डा नालों किते कट ब्याज, आसानी नाल उपलब्धता।
7: आज ही होम एक्विटी वीजा लेने दे लई कॉल करो 905-671-2000।
12: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है, ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है, बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे ने, कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे ने, जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जांदी है। पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस दे लई लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तुहानू डेट नू प्रॉपरली असेस करन, मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाण विच हेल्प करदे ने। इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200
13: F-150 Ford ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਟਰੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। F-150 ਜਾਂ ਮਸਟੈਂਗ ਜਾਂ ਲਿੰਕਨ ਜਾਂ ਫੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ, ਰੋਹਨ ਚੋਪੜਾ, ਚੋਪੜਾ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਚੋਪੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੌਪ ਸੇਲ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਚੋਪੜਾ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-302-4146-302-9941।
14: ਹਾਂ ਵੀਰ ਵੀਰ, ਕਿੱਧਰ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ?
15: ਉਹ ਭਾਜੀ, ਮੋਰਗੇਜ ਲਈ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਟੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ।
14: ਯਾਰ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਰਗੇਜ ਵਾਲੇ।
16: ਦੇਖ ਬਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਮੋਰਗੇਜ ਜਾਂ ਲੋਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਕਰਨਗੇ ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ।
14: ਅੱਛਾ ਜੀ,
17: ਆਹੋ ਜੀ, ਨੀਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਰਗੇਜ ਐਂਡ ਲੋਨਸ? ਦੈਨ ਕਾਲ ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ ਐਟ 905-671-2000। ਨੋ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਨੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ, ਲੋਨ ਅਪਰੂਵਲ ਵਿਦ ਇਨ 24 ਆਵਰਸ। ਨੰਬਰ ਰੱਖੋ ਯਾਦ 905-671-2000 905-671-2000 Mr. Sandhu।

0: 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 90545-12600. Hello, bro. Kithe hai tu?
1: Main client nu milan ja rahe hain. Soch rahe si Tim Hortons ch baith jaiye.
0: Oh, yaar. Ye ta old school ho gaya. Hun ta client meetings classy honiyan chahidiya ne. Nazara restaurant leke jao na nu. Private booths ne full privacy mil di hai. Free Wi-Fi te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai. Te khana bhi bahut vadhiya.
1: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
0: नजारा रेस्टोरेंट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी कोई कॉल करो 905-451-2600 905-451-2600

0: Sunflower Drive, Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 90545-12600.
1: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
2: निर्बल बाबे ने कहा से कृपा हो जाओगी नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा तो हो ही नहीं।
3: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
4: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
5: रेडियो आवाज,
0: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

0: and certified health insurance specialist from Top Choice Insurance Agency.
1: जब एच के मूवर्स का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात. एच के मूवर्स होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल. वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज. 30 years एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल. एच के मूवर्स, गिव अस अ कॉल. मिस्टर हरमिंदर, 416-524-6704, 416-524-6704.
2: हासल फ्री मूविंग के लिए एच के मूवर्स. इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश. खरीदिए जीटीए में कहीं और ना मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से. और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट. 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन. 9054586808.

0: 1015.
1: यार इना इंश्योरेंस ने ते तू अगड़ाता वधिया ते जायज रेट कितों मिलेगा
2: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनिया बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
3: क्रिटिकल मॉर्गेज आरईएसपी आरआरएसपी विजिटर इंश्योरेंस सुपरवीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता थानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
2: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 6473300
3: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
4: यार मेरा तो डाटा ही मुक गया ते जेड़ा मैं प्लान दा पे कर रही हूँ वो तो बिल्कुल ही वेस्ट है
5: ओए तू स्टिल डाटा इश्यूज ना डील कर रही है तेनू वैल्यू मोबाइल जाना चाहिदा मेनू बहुत वधिया प्लान मिल गया सीगा जेड़ा मेरे बजट च सी
4: सच्ची
5: हाँ यार वैल्यू मोबाइल ते कैनेडा दे मेजर प्रोवाइडर्स दे फोन प्लान मिलदे ने उत्थे मेनू मेरे बजट दे हिसाब ना परफेक्ट प्लान मिल गया
6: इस सीजन ओवर पे करना बंद करो स्ट्रीम टॉक ते टेक्स्ट करो बिना स्ट्रेस तो विजिट करो valuemobile.ca या अपने नियरेस्ट वैल्यू मोबाइल लोकेशन ते जाओ साडे मोबाइल एक्सपर्ट्स तुहानू बिल्कुल परफेक्ट फोन ते प्लान देंगे जो कि तुहाडे लई बेस्ट होवे
4: ओ अच्छा मैं आज ही वैल्यू मोबाइल जाके आनी हां
5: हां हां मैं भी तेरे नाल ही चलदी हां मैं भी अपने फोन नू अपग्रेड कराना है
6: वैल्यू मोबाइल द राइट फोन द राइट प्लान द राइट प्लेस

0: हाँ ठीक है ना। पर मैनू हरदीप वीर जी का भी मैसेज आया और क्लियरली, चलो सर ठीक है सर, तुहानू भी ठीक सुनाई दे रहा बार, बहुत प्यार वाले वीर है मेरे हरदीप भाजी है नी, वो भी आ रहे हैं शो ते, हंस राज हंस दे शो नू देखने वास्ते। अपने पिछे करके नीति जी का बर्थडे भी सी और नीति जी नू असी ऑन एयर भी हैप्पी बर्थडे कहने हैं और इन्हों दे मिसिज का बर्थडे सी और असी नीति जी नू हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, हरदीप जी वालों भी कह रहे हैं ते असी अपने वालों भी कह रहे हैं। और पर डिनर तुसी कल्ले कल्ले कर रहे हैं ये सानू पता लग गया। चलो कोई नहीं, तुसी इंजॉय करो डे नू और नीति जी हैप्पी बर्थडे टू यू, और असी तुहानू लेट कर रहे हैं पर सपोज टू भी सानू पहले मैसेज देना चाहिए सी, पर कोई गल नहीं, लेट वाला हैप्पी बर्थडे तुहाडे वास्ते। कहंदे आ वी विशेज देखो, मैं अगे भी जिक्र करता हुंना, जिंदगी दे विच ना जरूरी है कि बंदा दिन खुशी दे जदों मर्जी बना सकदा, ठीक है ना। ते ओ चलो एक कॉल आली होर। हेलो हेलो,
1: हाँ जी भाजी, सत श्री अकाल जी। धीरा गिल बोल रहे हैं जी। धीरा
0: कौन बोल रहे जी?
1: गिल बोल रहे हैं
0: ओ
1: जी।
0: बल्ले शेर दे, धीरा गिल साहब होल्ड करो, तो लाने लाइन ते कोई गाना शाना लाने है तुहाडा, सवेरे सवेरे
1: थैंक यू
0: फिर ही गल
1: थैंक यू।
0: करांगे तुहाडे नाल। और धीरा गिल साहब तुहानू पता है बड़े प्यारे सिंगर आ, बहुत अच्छे सिंगर आ और अच्छा गाया है इन्हां ने, और धीरा गिल साहब की आवाज़ गीत तुहानू सुनाउने आ सवेरे सवेरे। मंडे वैसे थोड़ा जिहा कम ढिल्ला जिहा हुंदा ही है, और चलो कोई गल नहीं, देखते हैं कि अगे जाके किदां कम हुंदा, शायद तत्ता कम हो जाए सवेरे सवेरे, ठीक है ना। ते धीरा गिल साहब की अज आवाज़ तो फिर असी शुरू करते हैं, कोई ना कोई गीत संगीत है, और धीरा गिल साहब वधिया गीत जिहड़े कि गाउंदे आ तुहाडे वास्ते, अज कल कनेडा की फेरी दे आ, कनेडा दे टूर दे आ, और इन्हां दे जिहड़े सज्जन हन, मैं उन्हां दा नंबर देना तुहानू कनेडा दा, जे तुसीं विआह शादियां दे किसे नूं सदना होवे धीरा गिल साहब नूं, जां कि इन्हां दे प्रोग्राम कराउणे होण ते नंबर इन्हां दे तुसीं साडे मैनेजर साहब नूं नोट कर सकदे आ, 647-523-7474 दे कॉल कीती जा सकदी है। धीरा गिल साहब दा नंबर है, तुहानूं पता कि बहुत अच्छे सिंगर आ और तुहाडे वास्ते कनेडा दी इस टाइम फेरी दी आ, कनेडा दे विच आए हुए आ, साडे ब्रैम्पटन दे विच ही आ। जे तुसीं भी कितें विआह शादियां दे सदना चाहुंदे आ, कोई मेले कराउणे चाहुंदे आ, ते धीरा गिल साहब तुहाडे वास्ते हाजिर है। मैं नंबर तुहानूं फिर देना, 647-523-7474।

0: 1230.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: Hello.
2: Kataria Tours and Travel?
1: Haan ji, Kataria Tours and Travel.
2: India diyan tikta chahidiya si.
1: Oh, India ki, tusi jithon marzi diyan tikta lai lo. India kithe jana?
2: Char tikta Delhi diyan, te do Amritsar diyan. Mil jaangiyan?
1: Mil jaangiyan. Bilkul mil jaangiyan. Delhi, Mumbai, Amritsar. Eho ta saadi speciality hai. Bas dasso ki tikta kado diya chahidiya ne. Te haan, special tour packages te honeymoon packages vi saade kol available ne.
2: Parosiman service te sab to badhiya rates le ikko ikna. Kataria Tours and Travel. Booking le aaj hi call karo 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
3: 32-55-80
4: ते 98
3: एकी गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
4: वो काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इना गोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
3: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828

0: 32, 55, 80, 93
1: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
2: काउंटिंग नहीं ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्हा कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते
2: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 9054502828 905-450-2828
4: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 square foot दी कॉटेज सेल ते आई है 3 bedroom 2.5 washroom हन हाई एंड दे फर्नीचर ना फुली फर्निश्ड है $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 feet दा पैड भी बनया है 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट कर दी है 12x30 foot दा डेक है प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है मस्कोका रूम भी फर्निश किया गया है पिछे पानी है अते खूबसूरत है क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होगा बीच भी नजदीक है जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222
5: Wakey, wakey, wakey, wakey.
6: It's wake up time. It's wake up time.
5: Now is the time to wake up.
7: Crank up the radio. You're listening.

0: ladies and gentlemen, introducing from CHLO AM 530, the number one radio host in the world, Dave.
1: वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादी उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज दा दिन अच्छा गुजरेगा। साडी कोशिश रहेगी 5 बजे तक तुहानू ढेर सारे डालर बचा के देईए ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस ते ग्रैंड फर्नीचर तो पैसे दी वड्डी बचत होएगी, क्योंकि पैसे जिहड़े आ तुहाडी जेब च सानू चंगे लगदे आ। जिन्ने एक्स्ट्रा होणगे ओही वधिया लगदे ने। उस सिलसिले च सुल्तान जी साडे नाल स्टूडियो च आए हुए ने।
2: जुलाई तो लाके 5 जुलाई तक स्पेशल सेल है। सो 1 जुलाई तो 5 जुलाई तक एडवांटेज मिल गया, नहीं तो कैनेडा डे इको दिन 1 जुलाई नु सेल मिलनी सी ना जी। सो हुण 1 जुलाई तो के 5 जुलाई तक सेल दा मतलब ए होया कि ए वीकेंड भी साडियां ओ फैमिलीज फायदा चुक सकदियां जेड़े समहाउ बिजी सी, कोई फैमिली फंक्शन सी, किते होर आउटडोर गए हुए सी, नहीं कैनेडा डे आले दिन बुधवार आ सके, इस वीकेंड नु मिस ना कर लेना। अज शाम 7 बजे तक तुहानू ए डील मिलनी है। एदे विच अज आपां गल करदे हां जी, पहले लिंक च सिर्फ हर वो चीज जड़ी 699 दी।
1: ओके 699
2: 65 इंच टीवी 699
1: हो गया,
2: वाशर 699
1: वाह,
2: एदे नाल डिश वाशर 499
1: अच्छा,
2: यानी 699 या थले थले
1: ओके।
2: फिर फ्रिज वो भी 30 इंच अपराइट फ्रीजर दे नाल फ्रिज है, 1200-1400 डॉलर वाला 699
1: अच्छा।
2: चाहे बेसमेंट च रखो, कॉन्डोमिनियम च रखो, एज तुसी सेकंड फ्रिज चाहिदा तुहानू गराज वास्ते ते एज सेकंड फ्रिज ले लो, अदरवाइज 1200-1200 तो घट नहीं जी।
1: देखो कई फैमिलियां वड्डियां होंदियां, एक जेड़े किचन च फ्रिज होंदी आ ओदे विच सारा समान नहीं टिकदा, गराज च रखिया रख लो
2: बिल्कुल
1: 699 दा।
2: हां जी
1: ठीक है।
2: ते स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव दी गल करिए, ओ 799 है पर कैनेडा डे स्पेशल सेल है, ए लास्ट वीकेंड है, जेड़ा लै गया सो लै गया, जेड़ा रह गया सो रह गया वाली डील होनी है, क्योंकि एदे च फ्रिज स्टोव डिशवाशर 3 पीस किचन बंडल लिया $2000 सेव होने हैं जी। जे तुसी फ्रिज स्टोव डिशवाशर 3 पीस किचन बंडल लेना ते $5000 तो तुहानू 2999 दा मिलना, ते 2999 पे भी 6 महीने च करना,
1: कोई ब्याज नहीं,
2: कोई इंटरेस्ट नहीं, फ्री होम डिलीवरी है, 1 year parts and labor warranty include in the price, क्योंकि all product factory sealed brand new डब्बे च बंद मिलने तुहानू। 905-450-2828 नंबर है। ते एक काम जरूर करना, BramptonAppliances.com साडी वैबसाइट जरूर विजिट करो, साडी वैबसाइट तुसी रिकमेंड भी करो अपने फ्रेंड्स फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव नू, उहदे 2-3 फायदे होने हैं। एक तो फायदा यह होना है कि तुसी प्राइस कंपेयर कर लेनी है, दूजा फायदा यह होना कि प्रोडक्ट की नॉलेज मिल जानी है, तीसरा फायदा यह होना है कि उहदे विच तुहानू वेयरहाउस क्लीयरेंस सेल का एक आईकॉन मिलना है। जो तुसी वेयरहाउस क्लीयरेंस सेल का आईकॉन क्लिक करना है तो बहुत सारिया आइटम तुहानू 40% कुछ एक 50% डिस्काउंट ते मिलनिया।
1: सो 40-50% डिस्काउंट लई तुहानू जाना पेगा BramptonAppliances.ca
2: या .com जेड़ा मर्जी,
1: ठीक है .ca या .com ते जाओ। Brampton Appliances एक वर्ड है, www.BramptonAppliances.com.ca ते जाके 40-50% ऑफ तुसी सिलेक्ट कर सकते हो जी।
2: ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਇਨ ਕਸਟਮਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।
1: ਠੀਕ ਹੈ।
2: ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਿੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫਰਿੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ 699 ਦਾ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
1: ਹਾਂਜੀ।
2: ਜੇ ਤੁਸੀਂ 85 ਇੰਚ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੀ ਬਰੇਵੀਆ ਮਾਡਲ, ਤੇ ਸੋਨੀ ਦਾ ਬਰੇਵੀਆ ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ X1 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਆਂਟਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਕੰਸਿਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਨੀ ਦਾ ਬ੍ਰੇਵੀਆ 3 ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ $2500 ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ 1599 ਚ 85 ਇੰਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 55 ਇੰਚ ਲੈਣਾ 399 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, $800 ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 65 ਇੰਚ ਲੈਣਾ 699 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ $1000 ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 75 ਇੰਚ ਲੈਣਾ ਅੱਜ 899 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ $1200 ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਸੇਲ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਡੀਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ ਜਾਂ GE, ਫਰਿਜਡੇਅਰ ਗੈਲਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਰੈਡੀ ਫਰਿਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਟ ਇਨ ਕਿਚਨ ਹੋਏਗਾ ਐਲੀਕਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈਣਾ ਬੋਸ਼, ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ 40% ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। 801 ਬੋਵੇਡ ਡਰਾਈਵ ਵੈਸਟ, ਜਸਟ ਈਸਟ ਆਫ ਚੰਕੂਜ਼ੀ ਔਨ ਬੋਵੇਡ ਹੈ ਜੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਸਿਸ। 905-450-2828 ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। 905-450-2828।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड टोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: मित्रां दे जंक्शन ते
5: हो केड़े जंक्शन ते?
4: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते। रात लगियां महफलां रे
6: भाई, महफलां ते रोज ही लगदियां ने। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते, इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ, ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकेट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM to 6 PM ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647-429-4040। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
7: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection Upper. To see cheap flight tickets si pal de vecho Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sono chahide ne. Ja to see visa services di pal de vecho puri family vacation Upper jaan di soch ne jithe tanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna maji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection Upper. Call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection over.

0: एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
2: आज खुश तो बात होगी
3: था। वो तो होना ही है जो तीनों वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग वाला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे। तेन लगता बन दई
2: है? आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
3: बॉलीवुड मूवीज ने, टीवी शोज, वेब सीरीज, हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करने वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला IPTV बॉक्स है। ते नाले टिल्लो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है, ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिए था?
4: क्या कह रहे हैं यहाँ पर?
3: ओ पाजी, सेलिब्रेशन 40 years इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
3: पर टिल्लो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गौर रोड 905-204-1313 या tillovideo.com।

सुगंध वर्गा किसे चरखे दी तंद वर्गा का उत्ते सजरी त्रेल वर्गा दो दिलां दे हुंदे मेल वर्गा बुड्ढे बाबल दे हाथ च डंगोरी वर्गा अमड़ी दी मिठी जही लोरी वर्गा गबरू ते चढ़ दी जवानी वर्गा किसे प्यार ना दित्ती होई निशानी वर्गा होली वर्गा न्यूज व्यूज गीत संगीत हास्य ठट्ठे दे लैके रंग तुहाडे रूबरू लैके आ रहे।

0: सही सुनिया बई जिन्ना सोना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है। जलेबियां पकौड़े समोसे टिक्कियां व्याह होवे पार्टी या होण किट्टियां स्वीट महल दी वेज या नॉन वेज आइटम्स ले डाइनिंग करो या केटरिंग करवाओ। इको नंबर कुमाओ 416-679-9999 और विजिट यूनिट 9680 रेक्सडेल बुलेवार्ड जोबिको। स्वीट महल ट्रेडिशन ऑफ टेस्ट।
1: जी हाँ, चांदी के फैंसी सेट, चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
2: इतनी बस नहीं, जेंट्स ले चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
1: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
2: गोर एंड अवनीजर इंटरसेक्शन ते मुर्दबारे बाय प्लाजा दे विच सिल्वर हट।
1: 647-339-3521
2: 647-339-3521 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन
1: सिल्वर हट।
3: रात हमें छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
4: मैं चलिया स्काईडोम ऑटो ते बॉडी सेंटर, जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है, जो करनगे मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर। एक्सीडेंट होने ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी कर देने। स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 साल तो तुहाडी सेवा विच।
3: भैया ते कारां दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने।
4: कॉल करो 905-874-9898।
5: बम्बा गया मैं जिथे जावा मुंडे कहंदे बम्बा गया।
6: वे जिथे चलेंगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले लई।
7: लेनियां होन या चार, बिजनेस लई जाना होवे या फिर घूमन लई, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट, हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस लई कांटेक्ट करो। एयर टिकट्स, इंश्योरेंस, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओ भी रीजनेबल प्राइसेस ते। स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने। कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा। कॉल 905-678-1200।
8: जी दोस्तों, तुसीं जुड़ चुके हो प्रोग्राम सारंग दे नाल। मैं तुहाडा दोस्त अते होस्ट जगजीत महल, तुहाडा ते मेरा साथ बना रहेगा सही 3 बजे तक। बहुत सारियां गल्लां बातों होणगियां, स्पोंसर बारे जानकारी दित्ती जाऊगी, गीत संगीत होएगा। जिवें कहिंदे ना जे आपां पंजाबी साहित्य की गल करदे आं तां पंजाबी साहित्य दा जिहड़ा इतिहास हैगा, पंजाबी साहित्य दा जिहड़ा सानूं लिखती रूप दे विच मिलना शुरू होया, वह नाथां जोगियां तों शुरू होएगा। सो गलबात करांगे इस बारे भी। नाथां जोगियां तों बाद बहुत सारे किस्साकारां ने किस्से लिखे ने गे। हीर रांझे दा लिखिया, मिर्जा साहिबा दा लिखिया, सस्सी पुन्नू दा लिखिया। जिवें आम तौर पर बहुत सारे लोग कहिंदे आ भी मिर्जा उन्ना मरने वेले औखा नहीं होया जिन्ना उन्हों गाउण वाले नूं औखा कर गया। सो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कलाकारां ने मिर्जा गाएगा। एक नवा मिर्जा रणजीत बाबे की आवाज़ में भी आएगा, वह भी बहुत सोहना गा। तो तुहानूं असीं वह मिर्जा सुनावांगे, तो उस तो बाद आपां जुड़दे हां इस प्रोग्राम दे विच बहुत सारियां गल्लां बातां लैके। लो जी सुनो।

0: ये देखी फिल्म तुसी?
1: नहीं मैं नहीं देखी।
0: नहीं देखी?
1: नहीं देखी।
0: सच्ची?
1: नहीं देखी।
0: जान दे करो जान।
1: नहीं देखी।
0: सौ खाओ सच्ची।
1: सौ लगे।
0: ये फिल्म नहीं देखी तुसी?
1: नहीं मैं देखी नहीं यार। हो सकता देखी हुई पर
0: नहीं, हो सकता नहीं तुसी देखी नहीं मिलना था।
1: नहीं देखी नहीं। चल मान लेने।
0: अच्छा जे मैं कॉलना खोलदा हुण ये फिल्म तुसी कितनी बार देखी है ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਭਾਈ।